प्रभु दे प्यार विच लीन होया होया मनुख प्रभु दी सर्वशक्ति मानता नू अपने हिरदे विच वसा लैंदा है, पर ऐसा केवल ख्यालां विच ही नहीं करदा बल्कि वह जगत विच इस गल नू वापरदी होई वेखदा है कि प्रभु हर थान ते अपने सेवक की रक्षा करदा है। श्री गुरु कलगीधर जी महाराज इस पावन शब्द विच फरमान करदे ने, रोगण ते अरसोगण ते जल जोगण ते बहु भांत बचावै, शत्र अनेक चलावत भाव तऊ तन एक न लागण पावै। भाव प्रभु अपने सेवक दी रोगां तों सोगां तों शत्रुआं तों पापां तों रख्या करदा है, इत्थों तक कि जन्म तों भी पहलां दी हालत विच सदा अपने सेवक लई रख्यावान हुंदा है। प्रभु इतना कु सर्वशक्तिमान है कि अपने सेवक दी हर प्रकार और हर थां ते रख्या करदा है। गुरु कृपा करे ये ख्याल साढ़े हिरदे विच भी वसे ते असी इस ख्याल नू माण सकीए कि प्रभु रोगण ते आसोगण ते जल जोगण ते बहुपात बचावै।

सुख वसना आठ पहर सिमरोते सरसना जे प्रसाद रंग रस भोग वर्जिया किसे गल तो नहीं कंडीशन अगे लाई अंडरलाइन कीती है एक गल पॉइंट आउट कीता है कि जिस मालिक दी मेहरामत नाल तेनु आनंद मिले हुए ने जे प्रसाद रंग रस भोग गल एको ही है हुन नानक सदा त्याई है या बनियो सत्संग जी समा होया है आप भी कृपा करो इस बच्चे बच्ची नु गुरु दी वाणी द्वारा जो बख्शीश हुई है उस असीस अंदर हिस्सा पाओ ना जाने इस महाभिरदे दी प्रार्थना दुआ इल्तजा जोदड़ी तमन्ना आरजू अरदास ते असीस बख्शीश इन्हां दे जीवन नु आदर्शक बना जावे ए तो कह के कीर्तन संपूर्ण हुंदा है बूटा माता की आसीस।

जगत है जैसे सपना बारू भीत बनाई रचपत रत नहीं दिल जा तैसे ही ए सुख माया के उज्जो कहां दवा अजो समझ

बैठे बैठे हुक्मनामा होया। तो चार ताल चार पंक्तियां और चार ही राग राग वो कहन लगे तो चारे भरा ही होण। मैं कहा जी भरा चारे किस तरह? वो कहन लगे इस तरह, एक माल कौंस है, एक चंद्र कौंस है, एक सूरज कौंस है, एक योग कौंस है, ये चारे भरा ने। तो उन चारों के स्वरूप मैं तुहानू दर्शन करावांगा और चारे ताल ने चारे नाल पंक्तियां ने श्रवण करना। राग माल कौश तो आरंभ है।

निषाद बदल गया ना, माल कौश का निषाद नीवा, चंद्र कौश का निषाद उपरला, इस चंद्र कौश और सूरज कौश।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा रे राग जोग

0: ताल दो ताल तीन ताल चार ताल और चार ही राग माल कौश चंद्र कौश सूर्य कौश जोग कौश चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात पर आई जब ते सात संग मोह पाई ना को बैरी ना ही बिगाना सगल संग हमको आई जो कब की नो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा रहा प्रभु कह देख देख नानक की साई। आप जी ने श्रवण किया है तराना साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने यह तराना जेड़ा है यह अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा चुका के रख देने वाली बात है। मैं इतने बहुत वे वे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी कह लगे जी सिखा तो राग गाना ही नहीं आता ऐसा साढ़े सामने न क्या क्योंकि अस्सा ही बार तो ला लेंगे पर राग गाना नहीं आता। मैं क्या जी राग साढ़े सतगुरों ने गाए केंद्र गाए तो सुनाओ यह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहें जी ये सानू लिखा दो तराना असी तो इस तरह की बंदिश कभी सुनी नहीं। मैं क्या जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने ही श्रवण करो उन्होंने ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नमस्कार की इतने दुर्गाना मंदिर की बात है सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज तो तराना श्रवण करना साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ के विद्वान ने कभी आप दर्शन करना तो तद्र दानी दानी सोमानी तल तोम तिरना तद्र दानी दानी सोमानी तल तोम तिरना तल तोम तिरना तल तोम तिरना जिस वेले आवे ना तुम दानी उदो महाराज मत्था टेकना जे तुम दानी हम भिखारी है और तुम दानी है
1: तद्र दानी दानी पोंदानी तलल तुम तिरना तद्र दानी दानी पोंदानी तलल तुम तिरना तलल तुम तिरना तलल तुम तिरना तद्र दानी दानी

चार पंक्तियां हैं। धागुर्दी धर्म दृष्टांत धागुर्दी देम दिरना धागुर्दी धर्म दृष्टांत धागुर्दी देम दिरना धागुर्दी प्रिक्ते बन

जागृति दे दे तान जागृति कौशल्या जागृति दे दे तान जागृति कौशल्या धने धने धने धने धने धने धने धने धने धने जागृति धर्म त्रिकाण जागृति देव निर्णा जागृति धर्म त्रिकाण जागृति देव निर्णा बंदी बिच बंदी जागृति तां तां बंदी निर्णा जागृति बिच बंदी जागृति तां तां बंदी निर्णा जागृति धने धने धने धने जागृति दे दे तान जागृति कौशल्या जागृति दे दे तान जागृति कौशल्या जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति दे दे तान जागृति

नक्षत्र वीणा का एक स्वर है दीन, बिरना जो है ये सितार का स्वर है, बिरना तिरना सितारे च वजद और दीन जड़ा है वचित्र वीणा में वजद है। यह साजा के दर्शन कराए ने।

तो मेरा भाव कहता है कि जेडे प्रचलित शब्द ने वह तो आप पढ़ लेने ते जेडे औखे शब्द ने वह भी रागी सिंह पढ़ने चाहिए ने। हां जी, तो रागी सिंह इधर भी ध्यान देना चाहिए, संतां नूं सरवण करना चाहिए, रागी सिंह गायन करना चाहिए। आनंद साहब जेड़ा है वह मर्यादा किवें पढ़न दी, जोटियां दी धारना पढ़ लैने ना, यह मर्यादा नहीं। मर्यादा है राग रामकली दे विच और तीन घर दे विच पढ़ना, घर तीजा रामकली, तो उसका स्वरूप श्रवण करो जिवें साहिब आप आनंद साहब पढ़ते हुंदे सी रामकली राग।

एक बारी सारे बोलिए, धन गुरु तेग बहादुर साहब, कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आख देन।

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आख देन ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसे ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी से मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा, जित दिन उनका स्वाओ होए ना आवे।

माता कहती है मेरा कमान वाला पुत्र चला गया, स्त्री वाल पुट रही है पर गल बन नहीं रही। कबीर जी आख देन कितना ही पैरोन पर वो कम नहीं आउंदे, विचारा मनुख कल्ला ही जा रहे। भगत आख देन देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई।

सुभता हाथ सोही, सुभता हाथ सोही, नमो लोहे की पत्रिका झलहे लहंती, नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती, नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती, नमो पान की बान गंगा तरंगी, नमो पान की बाण गंगा तरंगी, तेरे साम है मोख दाती अपंगी, तेरे साम है मोख दाती।

अस्तिरपान खंडो खड़ग अस्तिरपान खंडो खड़ग तुक्त तवर अर्ते अस्तिरपान खंडो खड़ग तुक्त तवर अर्ते सैप सरोही सैपरी यही हमारे सैप सरोही सैपरी यही हमारे तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार नाम तुहारो जो

चार ताल दे अंदर ए रीतबद्ध है। इसनों ध्रुपद ताल भी कहते ने, चार ताल भी कहते, ध्रुपद ताल भी कहते। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच, इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां वजाउणियां पेंदियां ने, और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण, गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हें की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे,
1: सेव करो करना निज की जैसे विचार पुनः, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अमर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है ये किसी आदमी की नहीं, यह वाहगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूंट विच होएगी, चढ़दे तो लेंदे तक खालसे की फतेह होएगी, और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे,
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसे की फतेह चार कूट के अंदर
1: रूम नापत बजाओ शाम मोहरा चला सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब दे वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब
1: सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज चार वर्ण एक वर्ण कराऊं
0: वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं चार वर्ण एक वर्ण कराऊं वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं
1: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: देख खालसे को

0: देख खालसे को तुर्क जाएंगे बाहर, देख खालसे को तुर्क जाएंगे
1: बाहर। एक लड़ा करे सिंह
0: झूलन नेजे हस्ती साजे, झूलन नेजे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौबत धुके सवा लाख जब धुके पलीता, सवा लाख जब धुके पलीता, तबे खालसा उदय।

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीस होर कच्चू बिच्चू बोल दे से।

अगर कोई सोच आ जाता, अगर कोई सोचन आता कि मतलब पाप भर गए, किस तरह भेजना, किस तरह खत्म करना, वाहेगुरु के नाम हर बारी जो एक सोच आ जाता उन्होंने वाहेगुरु के नाम भेजो रब वाल तेरे को नहीं रहेगा। खैर वाहेगुरु का मतलब कारण यही है, असि ता ही वरतते हैं कि असी खालसा बन जाए, खालस के रहे, गुरु के वल जाए।

एकदम तुहाडा मन उल्टी होएगा, एकदम हर एक बंदा का मन फिर शुरू होएगा, सब कॉन्शियस तो थॉट शुरू आएगा, फिर तुसी अंदरो वाहिगुरु एक थॉट आएगा वाहिगुरु कटेगा, दोबारा आएगा वाहिगुरु कटेगा, फिर हौली हौली अपना मन साफ हो जाते जे असी हर रोज करते।

अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो।

मान मैं तू मेरो खालसा से ही, खालसा मेरो स्वार्थ से ही। खालसा मेरो स्वार्थ से ही, खालसा मेरो करे निर्वाह, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो करे निर्वाह, खालसा मेरो दे अरसा, खालसा मेरो, खालसा मेरो धर्म अर कर्म, खालसा मेरो भेद निज मर्म।

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध, तदप न उपमा बरनत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध, तदप न उपमा बरनत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पल भी इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौं खा के कहना। या मैं रंच न मिथिया पाखी पा

किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्तारा, किवन किन्हीं निवल भयंगम साधे, मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा, किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया, किन्हीं मोन अवधूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती।

माली ने पानी दे दे के राखी कर करके सुंदर बगीचा तैयार किया। वेख वेख फुलां नूं खुश हुंदे बगीचे वल झाती मार मार के प्रसन्न हुंदे, मेरी मेहनत सफली होई। कोलों दी इक राही लंघिया, आवाज मार के राही नूं आखन लगा, ऐ राही आ मैं तेनूं अपना बगीचा विखावां। किड्डे सुंदर फुल खिड़े होए हन मेरे बगीचे च, राही मुस्कराया, आखन लगा रात नूं आवांगा शामी आवांगा आके तेरा बगीचा वेखांगा। राही तां टुर गया पर माली गाफल हो गया, जागया नहीं सौ गया, सुता रहा जदों जाग खुली ते सारा बाग मिध्या होया। कोई ऐसा जानवर आया, कोई गऊ मज अंदर आई जेड़ी फुलां नूं मिध मिध के, किधरे वेखो अद्धे फुल खादे होए ने, कोई खुरां थले दिते होए ने, कोई फुल उधर डिगा पिया, कोई इधर पिया, सारा बाग ही पलां विच उज्जर।

0: अच्छे से
1: जिसने ऊपर नाई को
0: काम करे घर किसका
1: आए न जाए ना दुख पाए ना मेरा ते

ज्ञान कब होना हारे। ताल जो जाने पाशा, ताल जो जाने पाशा, ते जन कब होना हारे।

छत्री को पूत हां। चढ़दी कला की बाणी देखो गुरु गोबिंद सिंह। छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है, छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है, कहता पे आवत हां जो करो और जंजार जितो ग्रह को तुहे त्याग कहा जितता मैं धरो। और जंजार जितो ग्रह को तुहे त्याग कहा चितता मैं धरो। अब रीज के देहो वह हमको जब बेनती कर जोर करो, जब आपकी आग निदान बने।

जवाब पर मोह गया है सब तन मन से कब हूं न करो शिवा पर मोह है शुभ कर्म ते कम हूं न करो न डरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो अरसों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखाओ अपने मन को लाल दिखाओ गुटाओ जो और सिखाओ अपने ही मन को ए लाल दिखाओ।

आन को दान न लागत नी को, आन को दान न लागत नी को, आज भले इनी को दियो, आज भले इनी को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो।

जे जे तुमरे ध्यान को। गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतगार का नाम नित प्रति जपते ने उन्होंने प्राप्ति होंद साफ फरमाते जे जे तुमरे ध्यान नित उठ जाए है संत जे जे तुमरे ध्यान का नित उठ जाए है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे आप मुक्त मुक्त करे संसार आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक दिस जन को सदा नमस्कार नानक दिस जन को सदा नमस्कार नित जपिए।